आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

झाने जाने को जारी राम तारी के जम तारी।

इलाकों रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like किशोर but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले। छम छम छम छम छम छम छम। ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है, रोज

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

किधर है रीति?

की घास ले, दाल को फूंक डालो ना, नीचे से माचिस की कांडी ला।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार मिक्स मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार थीम चॉइस में सुनिए दिए गए थीम शब्द पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉट स्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्कार नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आज मैं बिल्कुल टाइम से आ चुका हूं 6 बजे से, क्योंकि एक मेरा मतलब एंट्री गाना था, मैंने 6 बजे लगा दिया था और गाना ख़त्म होते ही मैं हाजिर हो चुका हूं, मतलब एकदम ऑन टाइम हूं आज मैं बिल्कुल। तो सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करते हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार अस्सलाम वालेकुम राधे राधे सत श्री अकाल और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। दोस्तों आज के इस मिक्स मस्ती में सभी मस्ती भरे गाने सुनेंगे और ये भी बता दूं कि जो दोस्त मुझे मैसेज नहीं कर पाते हैं, उन्हें मैसेज करना नहीं आता है, वो मुझे मतलब रेडियो हॉटस्टार के ऐप से मैसेज करना नहीं आता है, मुझे हमेशा इन व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, लेकिन आज उनके लिए ऑप्शन मिलता है आज के दिन के, वो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करना है यानी कि नॉर्मल कॉल, और नंबर है 9135841232। बहुत से दोस्त क्या करते हैं कि व्हाट्सअप कॉल करते हैं तो व्हाट्सअप कॉल तो बिल्कुल ही नहीं करना है, आपको नॉर्मल कॉल ही करना है और वो भी नंबर पर जो है 9135841232 पे। तो इस पर आप इन कॉल करके गाने सुन सकते हैं। और हाँ ये बता दूं कि आपको इन कॉल कब करना है, जब देखिए आपके फीडबैक ख़त्म हो या यानी कि गाने का एंडिंग हो, यानी गाना ख़त्म होने वाला हो, उस समय कॉल करना है। अगर पहले कॉल करेंगे तो बिल्कुल आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। ओके समझ गया ना। फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे बहुत से फीडबैक और दुआ से दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफ भाई सरफराज पटेल जी जुड़ चुके हैं। वालेकुम असलम भाई जान, निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और पहले ही एक कॉल आ रहा है, चलिए पहले कॉल रिसीव करते हैं, बातें करते हैं। एम डी जमरील जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं मिक्स मस्ती शो में, कैसे हैं आप? बताइए और क्या कर रहे हैं? बहुत जल्दी कॉल आ गया आपका जी, बताइए। अच्छा बताइए, आप आज दिन क्या सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज घड़घड़ा के आ रही है। तो ऐसे गाना बता दीजिए। तो अरे गाना बताइएगा, वो कौन सा गाना, मतलब चाहूं तुझे रात दिन, मुझे तो नहीं मिल रहा है उड़ान का। अच्छा एक मिनट देखता हूँ, ये कौन सा उड़ान है? अच्छा चाहूं तुझे रात दिन, ओके मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा। हाँ मिल गया मुझे गाना, ओके तो गाने को मैं प्ले करूँगा। जी बोलिए।
1: हाँ
0: अच्छा, अप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज आपको आरजे वंशिका जी फोन करके समझा देंगी, ओके वो बिल्कुल आपको समझा देंगी। और मैं तब तक आपके गाने को प्ले कर रहा हूँ, तब तक थोड़ा सा मैं दोस्तों का वेलकम कर लूँ, फिर आपके गाने को प्ले करता हूँ, ठीक है? धन्यवाद। ओके जी, तो हमसे जुड़ने वाले दोस्तों में नाम है शामिल हमारे मुबारक हुसैन जी का, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हमारे सर्वेश भगत जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आरिफ सिंधी जी आपका भी वेलकम करते हैं, अशोक देशमुख जी आपका भी वेलकम करते हैं, और हमारे फुल्ले भक्त संजू भाव जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अगर गाने की डिमांड है तो आपने किस गाने की डिमांड की जरूर बताइएगा। और यानी विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है विष्णु चंद्र जी। और निकलस जी डेनमार्क से ये भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं निकलस जी। और आत्माराम पाटिल जी वेलकम करते हैं आपका भी, साथ ही साथ मनीषा शर्मा जी वेलकम है आपका भी, और दीपक कुमार गायकवाड़ जी आपका भी वेलकम है, हुकुमचंद जांगड़ जी वेलकम करते हैं आपका भी, और हमारे लाखन ये मालाकार जी वेलकम है। तो गाना प्ले करता हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे लाख हमारा कार्ड देखते हैं कि नहीं, वहाँ पे भेजना पड़ेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट में, मैं भूल जाऊंगा। और प्रियंका जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: मारे मिटने की तूने बात कैसे सोची। अच्छा। ना तो मेरा माही है ना मेरा है पड़ोसी, कोई जो मलाई से कलाई थाम लेगा, क्या होते हैं माही तुझे पता तब चलेगा। जाऊंगी तभी जब माही डोला लाएगा, तेरे जैसा हाथ मलता ही रह जाएगा। सजना के साथ में तो जाऊंगी, निकल होगी तेरी मुश्किल।
2: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी है, दोनों गाने बहुत ही प्यारे थे।
0: ओके,
2: थैंक यू।
0: तो निकल जाइए जल्दी से फटाफट। और यहाँ पे निकला जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
3: गुड इवनिंग मिस्टर आजय,
0: गुड इवनिंग
3: अमन, अस्सलामुअलैकुम,
0: सलाम,
3: how are you?
0: I'm fine sir, what about
3: and
0: you?
3: And I feel so sorry for my friend Sunil Kumar.
0: Yes.
3: He's got an accident.
0: Yes,
3: we
0: yes.
3: We all should pray for him, he'll get well soon.
0: बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। मैंने आज उनसे मतलब जिन बातें भी की हैं वो ठीक है बिल्कुल, बस उन्हें इन रेस्ट की आवश्यकता है। और इन विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फूले भक्त संजू भाव जी कहते हैं कि ओके ठीक है। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी फरमाइश सुनवाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब को। और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और लिखते हैं कि ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे इन तीन दोस्तों की है। अशोक देशमुख जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं। सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए।
4: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार।
4: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज के प्रोग्राम में हमें एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है त्रिदेव और गाने का बोल है ओए ओए तिरछी टोपी वाले। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
5: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है त्रिदेव और गाने का बोला तिरछी टोपी वाले ओ बाबू भोले भाले। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटों को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शिकरानंद प्रकाश, सुनी कुमारी, मोनी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मुरे जी, आर जे वंशिका जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे आदित्य जी, आर जे सोनी जी, आर जे एम एस परमार जी, आर जे रत्ना जी, और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के अमर सर,
0: आत्माराम पाटिल जी क्या फिर सुन लेते हैं ऑडियो, क्या कहते हैं आत्माराम पाटिल जी। आत्माराम पाटिल जी,
6: अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार। आज के स्टार मिक्स चॉइस फरमाइश में मुझे एक गाना सुनना है सर, मुझे का नाम है त्रिदेव और आर्टिस्ट है सर सपना मुखर्जी और नसीरुद्दीन शाह और सोनम। वैसे कल्याण जी, आनंद जी और आनंद बख्शी जी ने इस गीत को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। ओए ओए तिरछी टोपी वाले ये गाना हमें सुना दो। साथ में हमारे अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है, सैयद अनु जी है, दत्ता कदम जी है, सुनील कोंडे जी है, और आपके साथ साथ सुंदरता की मूरत और सभी को आज का गीत सुना दो। मैं आत्माराम पटेल, थैंक यू, सुना दो।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं। पिकू राय जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं पिकू राय जी। और यहाँ पे गजानन सरकार जी लिखते हैं कि आदरणीय मंजी को प्यार आदरणीय अशोक दशमुख जी, सरस भगत जी, आत्माराम पाड़न जी के पसंद का गीत बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लाजवाब विमान के लिए। और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं
1: अशोक देशमुख जी

0: आपका शुभ नाम?
1: हाँ सर जी, अमन सर जी, संतोष कुमार बोल रहे हैं बनारस से सर
0: जी। बहुत बहुत वेलकम है भाई संतोष जी, और कैसे हैं
1: जी? हम ठीक हैं, आप बताएं सर।
0: अरे हम तो बहुत ही झकास बिंदास, फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक हैं एकदम।
1: जी, धन्यवाद सर।
0: तो आज इन्हें कैसे कैसे कॉल किया आपने ये बताइए।
1: तो सर यही गाना सुनने के लिए कॉल किया था आपने।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: तो राज मूवी का गाना सुना दीजिए, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं।
0: कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं, आए है क्या बात है, एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया। ओहो यहाँ पे कितना प्यारा है ना, मैं सुनाऊंगा। कितना प्यारा है ये चेहरा, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: आर्य अमन सर जी नमस्कार, गुड इवनिंग। आज बॉलीवुड मस्ती शो में आज एक गाने की डिमांड है।
0: ओह माय गॉड,
1: गाने का बोल है।
0: आप उसे लिखकर प्लीज भेज दीजिए कि आपका कौन सा गाना है प्लीज। और ये फीडबैक।
2: शुक्रिया अमन सर जी, अमित कुमार और सोनम जी ने गाया हुआ त्रिदेव मूवी का गीत बहुत ही रोमांटिक होने के कारण मुझे लगता है सभी को एक

0: पसंद आया होगा। और आपका भी शुक्रिया, हमारा तीनों चारों भाई का गीत आपने प्ले कर दिया। आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका भी। आत्माराम पाटिल जी और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। हमारा तीन भाई का फरमाइश अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए। हमारा अशोक देशमुख भाई जी का, आत्माराम पाटिल जी का, आपको लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू सर।
1: वेलकम जी। अगर आप लोग का इन्हें कॉल नहीं आया होता तो एक अगला गाना हमारे यानी गजानंद जी का ग्रुप का गाना प्ले होने वाला था, अब तो उसमें डिले हो गया थोड़ा। अब फिलहाल इस फीडबैक को सुनते हैं।
3: अमन सर जी, आज पहले ही हमारे आदरणीय अशोक देशमुख जी, आदरणीय सरोज भगत जी और आदरणीय आत्माराम पाटिल जी, इन तीनों दिग्गजों की आपने जो मिलीजुली फरमाइश चलाई सर, मज़ा आ गया। आज के कार्यक्रम का आपका आगासी गीत दिल को छू गया और अभी हमारे तीन दिग्गज श्रोताओं की आपने फरमाइश चलाई, तो मैं तीनों आदरणीय दोस्तों को दिल से धन्यवाद बोलूँगा हमें अपने गीत में याद करने के लिए और इतना अच्छा गीत सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच सरोज भगत जी, अशोक देशमुख जी और आत्माराम पाटिल जी, और अमन सर जी आपको शुक्रिया, आपने इनका गीत चलाया।
1: ओके, धन्यवाद। एक और मेरे पास आ रही है कॉल, उसको मैं रिसीव करता हूँ। हेलो, आपका शुभ नाम।
4: हाँ सर जी, मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ।
1: अजय कुमार जी, अच्छा जी, बहुत बहुत वेलकम है। और अजय कुमार जी, आपने कहाँ से बात कर रहे हैं प्लीज बता दीजिए।
4: जी हम बनारस से ही बोल रहे हैं।
1: बनारस से बात कर रहे हैं जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करता हूँ मैं। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे
4: जी? यही एक गीत सुना दीजिए।
1: तो बताइएगा तब। हाँ बताइए, कौन सा गाना?
4: जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, कसूर फिल्म का। अच्छा, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में।
1: अच्छा, यानी जिंदगी बन गए हो तुम, है ना?
4: जिंदगी बन गए हो।
1: और मैं बता दूं, इसी गाने की डिमांड हमारे सर्वजीत सेठी जी की भी आई है, तो दोनों दोस्तों की पसंद पे सुनवाते हैं इस गाने को। एंजॉय कीजिए
4: जी।

0: बिल्कुल जिंदगी बन गए तुम दो दोस्तों की डिमांड बहुत ही शानदार थी और वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और पहले तो ये सुनते हैं।
1: अमन सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं सरोजीत सेठी फाजिलका पंजाब से। कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा, आप बताइए।
1: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे।
0: बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहती हैं।

0: जामिनी जाने लगी है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे जुड़ चुके हैं प्रीति रायदास जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ओके, और उनके बाद से मेरे पास यानी कि मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं सुपर सॉन्ग है जी बिल्कुल। और मिसाल अंगा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मिसाल अंगा जी आपका भी। और ये पीकू राय लिखते हैं कि जिंदगी बन गए हो तुम, गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है और कितना प्यारा चेहरा भी, वो भी अच्छा लगा है। आरती तिवारी जी जुड़ चुकी हैं, क्या कहती हैं सुनते हैं।
2: हमें पहले रखो या ना रखो, हमें पहले रखो या ना रखो, लेकिन जहाँ मुझे रखो वहाँ किसी और को ना रखो।
1: वाह वाह,
2: एक गुजारिश है तुमसे, एक गुजारिश है तुमसे, अपनी हर तन्हाई में सिर्फ मुझे रखो, सिर्फ मुझे रखो।
1: वाह वाह वाह।
2: गुड इवनिंग अंसर जी, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं आप।
2: वैसे आपका अपने सॉन्ग से लेकर अभी तक जो गाने चल रहे हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम आते हैं, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। सभी दोस्तों को धन्यवाद।
1: ओके जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आरती तिवारी जी आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
3: अर्जया मंसर जी, सरजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए, एक भाई और भी हैं, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका भी। और रंजीत कुमार जी लिखते हैं कि अच्छा ये है, ओके ठीक है, कोशिश करूंगा, और हो सके तो सॉन्ग रिक्वेस्ट में एक बार याद दिला दीजिएगा। आरिफ सिंह जी लिखते हैं कि सरोजीत सेठी जी और एक भाई और का गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोनों दोस्तों को। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सरोजीत जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है। और हुकुम चंद जांगर जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद बहुत ही शानदार लाजवाब है, धन्यवाद देते हैं। और गजानन सुलकार जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद बहुत ही शानदार, बहुत ही धन्यवाद देते हैं। और इंदु भूषण त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। लिखते हैं कि मजा आ गया गाना सुनकर, जिंदगी बन गया हो तुम। महात्मा राम जी लिखते हैं फूलबाग संजू भाव जी का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। और यानी जुड़ चुके हैं, नाम है बिरजू जी, बहुत बहुत वेलकम है भाई बिरजू जी। और नंदलाल यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। तो अगला जो डिमांड, जैसे कि मैंने कहा कि मैं प्ले करने वाला था हमारे गजानन जी का ग्रुप का, तो वो सुनवाते हैं मैं आप सभी को। और इसमें सबसे पहले जो ऑडियो है हमारे, वो फूले भक्त संजू भाव जी का है, तो सुनवाते हैं ये कौन सा डिमांड लेकर आए हुए हैं।
4: रेडियो हॉटस्टार, रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी, आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार। अमन सर जी, कैसन बानी? ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी, मैं फूले भक्त संजू भाऊ बॉलीवुड महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज है बुधवार और आज की अपनी थीम है स्टार बॉलीवुड मस्ती, और आज के कार्यक्रम में सभी मस्ती भरे गीत चलने वाले हैं सर। तो हमने भी एक मस्ती भरा गीत चुना है सर, फिल्म का नाम है तोहफा, और इसी फिल्म का एक गीत है सर जिसे मैं आपको गुनगुना के बोलता हूँ। गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए है कल से, हाँ कल से। अमन सर जी आप एक सुना दीजिए।
1: okay.
4: और डेडिकेशन में याद करूंगा सर सबसे पहले आपको।
1: थैंक यू,
4: वेलकम सर जी, बाद में आपकी सुंदरता की मूर्त, इनको भी एक गीत में डेडिकेट करूंगा सर। धन्यवाद सर उनके लिए। बाद में चुलबुली आवाज की मलिका मेरी छोटी और प्यारे बहन आरजे वंशिका जी, आदरणीय आरजे परमार जी और रेडियो उत्तर स्टार सुन रहा मेरा पूरा परिवार, यह गीत मैं सभी को समर्पित करूंगा सर, प्लीज सुना दीजिए। रेडियो उत्तर स्टार जो दीवाना बना दे, आरजे मंजे के साथ मैं फूले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और इसी गाने में हमारे शामिल है मिसाल अंगद जी भी, तो सभी दोस्तों की डिमांड पे सुनवाता हूँ। और गजानन जी का पूरा ग्रुप।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं और शामिल करता हूँ मैं फीडबैक को भी। और सबसे पहले तो निकला जी लिखते कि की सिस्टर प्रियंका जी की अच्छा उनकी सिंगिंग अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तो अच्छी बात है आपको। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि अमर सर जी हम भी जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं बाबूलाल अंजाना जी आपका भी। और नेटवर्क बहुत सोलह चल रहा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमर जी को प्यार नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आरिफ सिंधु जी क्या कहते हैं,
1: गजानंद ग्रुप संजू बाबू जी मिशाल अंगद जी तीनों दोस्तों की मिली जुली फरमाइश बहुत ही शानदार, मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। और अमन सर जी आपने प्ले करके सुनवाया, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे आत्माराम जी लिखते हैं फूलबाग संजू भाव जी और सभी दोस्तों की डिमांड अच्छी लगी, सभी को थैंक यू सो मच। और निशांत बोल लिखते हैं गाना बहुत ही अच्छा लगा है, ओके जी। और रंजीत कुमार लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना है जी। और यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन जी नमस्कार, मैं दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा से एक बात बोलना चाहूँगा कि आप अपना नंबर बड़े ही आराम से और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएं ताकि आपके श्रोता उसे आराम से लिख ले, क्योंकि क्या है लिखते समय आप नंबर इतना स्पीड में बता देते हैं कि व्यक्ति तैयार भी नहीं रहता और आप नंबर बोल चुके होते हैं। अच्छा। और एक और चीज़ बताऊँ, मेरा गाना भी प्ले लिस्ट में है, उसे भी ज़रा देख लीजिएगा। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: ओके, तो एक बार नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9135841232। ओके, मैं फिर दो बार बता रहा हूँ नंबर, अच्छे से नोट कर लीजिए, 9135841232, 9135841232, यानी 9135841232। ओके, उम्मीद करते हैं कि दोस्त लिख लिए होंगे। और नंबर पे कॉल करना है, व्हाट्सएप नहीं करना है। विधवा ये फीडबैक सुनते हैं।
3: आरजे अमन सर जी, गजानंद सोलोकर जी का पूरा ग्रुप का भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद दे, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि हमारे मित्र गजानंद सोलोकर जी के और दोस्तों की ये पसंद बहुत अच्छी लगी, फिल्म तोहफा का लाजवाब गाना है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे ये फीडबैक सुन लेते हैं।
4: हेलो अमन सर,
0: बोलिए।
4: आपने मेरा गाना सुनवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दोस्त लोगों ने फीडबैक दिया तो मैं सभी दोस्तों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे किशन पास आके जो जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। अगला जो डिमांड आरिफ सिंधी जी का सुनते हैं।
1: अस्सलामु अलैकुम आरजे अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से आज के गाने के बोल रहेंगे। आशिक पुकारो, आवारा पुकारो,
0: अच्छा
1: पागल पुकारो, दीवाना पुकारो, हमने की है मोहब्बत तुमसे।
0: अच्छा।
1: फिल्म का नाम है फूल और अंगार। आवाज़ें दी है अभिजीत भट्टाचार्य जी ने, डेडिकेट रहेगा आरजे अमन सर जी आपको, आपकी सुंदरता की मूरत जी को, आरजे परमार सर जी को, आरजे वंशिका जी को, आरजे आकंसा जी को, आरजे रत्ना जी को, आरजे सोनी जी को, आरजे आदिति जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से, शुक्रिया।

0: जी आपका बहुत बहुत वेलकम है, आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज।
1: मोहम्मद सलीम सीतापुर से।
0: मोहम्मद सलीम साहब जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका मिक्स मथिस शो में।
1: जी तो, ये मेरी पसंद गाना लगा
0: जी, जी जी बता दीजिए।
1: दिल की कलम से हम तुम लिखेंगे,
0: दिल की
1: प्यार मोहब्बत क्या सुना।
0: अच्छा जी, प्यार मोहब्बत क्या पर, ओके
1: सर जी कोई प्रोग्राम में भी पेश करिए, कम से कम फोन नहीं कर सर जी, हमने जैसे मैसेज नहीं कर पा रहे सर जी, कम से कम फोन तो कर लिया करें इतने का भी मत।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, कोई सर जी सर जी प्रोग्राम बनाइए।
0: अच्छा जी
1: जी, अच्छा हम लोग सर जी SMS नहीं कर पाते ना, दो तीन मतलब सर हमने फिर भी भेजा सर, उसका जवाब भी नहीं आया।
0: हाँ तो देखिए देखिए, अगर आप मतलब दिन व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो कोई जवाब नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मतलब यहाँ पे रेडियो हॉटस्टार का एप्लीकेशन से भेजेगा तो आपको जवाब मिल जाएगा।
1: फिर भी सर जी हम लोग सर जी को ये बना दीजिए, फोन करिए गाने अपनी फरमाइश करने के लिए
0: जी। बिल्कुल, तो आपको फोन किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि मतलब यानी कि कैसे क्या करना है कि नहीं।
1: सर जी सर जी थोड़ा पढ़े लिखे होते बात नहीं की, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छे से सुनते हैं, वो प्रोग्राम बहुत बढ़िया आप लोग पेश करते हैं।
0: थैंक यू सो मच आप लोग सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जैसे जो नियम है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं।
1: नहीं वो तो बात बस है आपके सुनिए,
0: अब मान लेते हैं कि हर दोस्त का मैसेज आएगा मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन पर और आप मुझे व्हाट्सएप भेजेंगे तो मैं तो इन व्हाट्सएप को देखता भी नहीं हूँ, समझ लीजिए। यही बात है, और आपने यहाँ पे आज कॉल किया तो मैंने आपके कॉल को रिसीव किया, है कि नहीं
1: भाई। नहीं सर जी, यही सर जी ठीक है सर जी, एक बार हमने और कॉल की सर, कॉल लग गई थी सर, वो हम मैसेज चल नहीं पाते हम लोग, मैसेज चक्कर बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को सर जी, को अपनी फरमाइश बता ही सकते हम।
0: अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल जो भी प्रॉब्लम हो आप हमको लिख के भेजिएगा और आपको फोन करके आपकी ID बनवा दी जाएगी और आपको हेल्प किया जाएगा। ओके
1: ओके सर जी,
0: चलिए फिलहाल गाना एंजॉय कीजिए। वालेकुम सलाम।

0: बिल्कुल दिल के कलम से हम लोग लिखते रहेंगे। फिलहाल फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं, इसे हम पढ़ते रहेंगे। और सरिता सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सरिता सिन्हा जी पटना से। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजन सुलकार जी के गुरु की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी, उनको धन्यवाद देते हैं। आत्माराम जी लिखते हैं कि आरिफ सिंह जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत उनको शुक्रिया। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, एक और कॉल आ रही है करते हैं। जी आपका बहुत बहुत हेलो।
1: हाँ सर
0: जी हेलो, आपका शुभ नाम?
1: हाँ सर जी, मैं किशन बोल रहा हूँ
0: जी। और ये कहाँ से बात कर रहे हैं किशन साहब?
1: सर आगरा से, मैं आगरा से बोल रहा हूँ।
0: आगरा से? ओहो, तब तो जब दिल करता होगा तब आगरा का ताजमहल का दीदार करते होंगे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और बताएं कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
1: जी हम भी ठीक हैं।
0: तो आप मतलब यानी कौन सा काम करते हैं आप?
1: तो सर हम फायर का काम करते हैं।
0: अच्छा, फायर का काम करते हैं। कब से सुनते हैं रेडियो हॉटस्टार?
1: जी रेडियो हॉटस्टार तो हमको लगभग 2 साल हो गया।
0: 2 साल हो गया और आज मुझे कॉल कर रहे हैं, बताइए बेहद नहीं है।
1: नहीं नहीं सर जी, मैं उसमें भी कॉल लगाता हूँ ना, आरजे वंशिका में जब चलता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: हेलो, जो फोन इन बदमाइश थी ना, आरजे रत्ना जी से मेरी बात हो चुकी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: सर आपसे भी बात हुई है हमसे?
0: मुझे तो याद ही नहीं
1: है। जी आपको याद नहीं?
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। फिलहाल बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत सुनाइए सर।
0: बताइए कौन सा?
1: परदेसी परदेसी जाना नहीं।
0: परदेसी परदेसी, भाई इतना सैड सॉन्ग।
1: जी सर,
0: क्या हो गया है
1: सर? ऐसे ही थोड़ा।
0: कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिएगा।
1: तो सर थोड़ा पूरा चलाइएगा सर।
0: हाँ?
1: पूरा चलाइएगा
0: पूरा। ओ माय गॉड, बहुत लंबा गाना है, करीबन
1: सर 7 मिनट 8 मिनट।

0: जी लिखते हैं बेहद शानदार पसंद है भाई साहब की पसंद, बहुत लाजवाब लगी, धन्यवाद देते हैं उनको। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं गाने तो बहुत ही मस्त मस्त प्ले हो रहे हैं। एक और आ रही है कॉल, रिसीव करते हैं। जी आपका शुभ नाम प्लीज बता दीजिए।
1: हेलो
0: हेलो जी, आपका शुभ नाम।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम सर।
1: मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ सर, रामपुर उत्तर प्रदेश से।
0: जी जरा फिर से नाम बताएंगे प्लीज।
1: शेर सिंह रामपुर उत्तर प्रदेश।
0: शेर सिंह जी, ओहो क्या बात है, क्या नाम है भाई। और कैसे
1: जी सर
0: हैं?
1: अभी आपका बढ़िया साहब, आप कैसे हैं सर?
0: हम तो बहुत ही झकास बिंदास, फर्स्ट क्लास, मजे में चकचक, एकदम मजे में है एकदम। क्या बताएं आपसे
1: जी। सर आपका प्रोग्राम सुनना था, बहुत अच्छा लगा था, आपका नंबर मिल गया।
0: जी जी,
1: हमको बहुत खुशी हो रही है। तो और सर हम मूवी का गाना सुनना है।
0: हाँ बता दीजिए कौन सा गाना।
1: कागज कलम दबाजला सर।
0: कागज कलम, ओके जी, ये सुना चाहेंगे? सुनाएंगा बिल्कुल।
1: जी जी सर, सबसे पहले शामिल आप रहेंगे सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: और सर हमारे जो लाइव श्रोता सुनने हैं और वो सभी मतलब एडिटेट रहेंगे।
0: ओके
1: जी। और सोनू गौतम जी का बहुत नाम सुना है सर, जो विनर बन चुके हैं कई बार।
0: जी जी जी जी जी,
1: हमको बहुत खुशी हो रही है सर।
0: तो आप भी बन चुके हैं आज।
1: जी जी जी सर, बहुत खुशी हो रही है
0: जी,
1: सर
0: बिल्कुल। तो चलिए सुनवा देगा ना आपका।
1: जी जी सर जी।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाने। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक अभी भी हैं। जितेंद्र जी लेते हैं लाजवाब पसंद सभी दोस्तों की प्ले हो रही है। और ये क्या कहते हैं प्रियंका जी, सुनते हैं।
1: मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया,
0: बहन जी
1: सब कुछ

0: छोड़ के।
1: एक और आ रही है,
0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, थैंक यू
1: कर रहा हूँ जी। हेलो, आपका शुभ नाम प्लीज बता दीजिए।
2: हेलो
1: हेलो जी, आपका शुभ नाम सर जी।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार नमस्कार, और बताइए।
2: ठीक है सर, अपना बताइए। हम सर राहुल यादव बोल रहे हैं चंदौली जिला से।
1: राहुल यादव जी, चंदौली जिला, ये कहाँ पड़ता है
2: जी? बनारस का पड़ोसी जिला है सर।
1: अच्छा, बनारस का पड़ोसी जिला है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत आपका वेलकम है। आपसे पहली बार मेरी बात हो रही है
2: जी। जी सर, हम आप पहली बार सर आपसे बात हुई हो रही है सर। अमन सर
1: जी, जी जी जी, और कब से सुनते हैं रेडियो हॉटस्टार सर जी?
2: मोबाइल एप्स के माध्यम से सुनते हैं सर, अभी 2-3 महीने हुआ।
1: अच्छा, 2-3 महीने हुए हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। फिलहाल आज क्या सुनना पसंद करेंगे ये बता दीजिए
2: जी। हमको सुनना है सर छुपा रोस्तम फिल्म का सॉन्ग।
1: गाने के बोल,
2: टाइटल सॉन्ग
1: तू निकला छुपा रोस्तम।
2: जी जी सर।
1: ओके चलिए सुनवा दिए, एंजॉय कीजिए।
2: ठीक है सर, नमस्ते।

राजेश कुमार जी लिखने के लाजवाब फरमाए चले। सभी दोस्तों की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गोविंदा खंडादे जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं गोविंदा खंडादे जी। और सरिता सिन्हा जी लिखते हैं कि हम फिल्म का गाना बहुत ही अच्छा लगा है, मजा आ गया सुनकर, धन्यवाद देते हैं। और निशांत राय बोल लेते हैं कि सभी गाने मेरे फेवरेट चल रहे हैं,

0: कि यशवंत सिंह जी की डिमांड मुझे बहुत ही अच्छी लगी है और मनीषा शर्मा जी लेते हैं कि परफेक्ट नाम जी बिल्कुल और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन जी
0: बोलिए जी।
1: हम इतना गंदा गाना
0: देखिए गंदा गाने की बात नहीं है बस आपका नाम ही मैच रेसिपी की बहन है मतलब है दैट्स ऑल। आरती जी लिखते हैं कि सिर्फ यानी कॉल ही लेंगे बाकी अरे देखिए ये लोग आज के लिए इन लोग के लिए स्पेशल मौका मिला मतलब मिलता है ये लोग हम हमेशा कभी यानी कि कॉल मैसेज कुछ नहीं करते हैं तो इन लोग के लिए आज के लिए मैं मतलब खुली छूट देता हूँ कि भाई लाइव शो में आप मुझे कॉल करके मुझे गाने सुन सकते हैं। आप लोग भी गाने शामिल करूंगा जैसे जैसे मुझे मौका मिलते रहेंगे मैं आप लोग भी गाने में प्ले करते रहूंगा टेंशन मत लीजिए। फिलहाल अगला डिमांड मैं प्ले कर रहा हूँ इन विष्णु चंद्र जी का सुनना चाहते हैं तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी नींदिया तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम है रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और मेरे पास फिर बैंक है इंदु भूषण जी लिखते हैं वाओ सभी दोस्तों के गाने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चल रहे मजा आ रहा है बहुत। और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग चल रहा है ओके जी। और निकला जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: मिस्टर आर जे अमन
0: यस सर
1: वेरी गुड इवनिंग सर एंड लिसन टू दिस एआई जनरेटर
0: बोलिए ओके एक यहाँ पे आ रही है कॉल मैं रिसीव करता हूँ जी। हेलो आपका शुभ नाम।
2: मैं नरेश सैनी बोल रहा हूँ पानीपत।
0: अच्छा नरेश सैनी जी।
2: हाँ जी हाँ पहले भी बात हुई थी एक बार।
0: अच्छा बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और कैसे हैं?
2: बढ़िया जी अपनी सुनाओ।
0: हम तो बहुत ही मतलब बहुत ही झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक हैं एकदम।
2: अच्छा ठीक। अच्छा एक वो गाना है फिल्म का नाम है हातिम ताई। गाने के बोल हैं वो जो सलमा सलमा है ना वो नाम है उस।
0: अब ऐसा तो मैं समझ में आएगा नहीं। आप गाने का सही बताइएगा तभी मैं मतलब ढूंढ पाऊंगा है कि नहीं।
2: हाँ जी हाँ जी तो है। चलो कोई सा भी गाना सुना दीजिए उसका।
0: आप बता दीजिए मुझे
2: उसका कोई सा भी गाना सुनवा दीजिए
0: हातिम ताई का।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: अब मुझे तो मैं कोशिश करता हूँ कोई गाना मुझे मिलता है तो मैं सुनाता हूँ आपको। ठीक है
2: ठीक ठीक ठीक ठीक
0: ओके। फिलहाल तो
2: ठीक
0: इनको हातिम ताई का गाना सुनना है और मुझे मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा गाना है मैं सुनवा इसमें बहुत सारे गाने हैं मतलब ओके। फिलहाल मुझे एक गाना दिख रहा है हातिम ताई का मैं इसको सुनवाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि शायद ये गाना आपको अच्छा लगे। फिलहाल मैं तब तक फीडबैक शामिल कर लूँ फटाफट क्योंकि बहुत सारे फीडबैक छूटे हुए हैं। तो यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये विष्णु चंद्र जी की डिमांड बहुत ही अच्छी लगी बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि तेरी बिंदिया उड़ा के ले गई मेरी निंदिया गाना बहुत ही अच्छा लगा है। और नंदलाल जी लिखते हैं कि एप्लीकेशन में सर बोलने वाला ऐप काम नहीं करे क्यों एक बार फिर से अपडेट कीजिए या अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देख लीजिए जरूर काम करेगा क्योंकि आपने अलाउ नहीं किया होगा। अलाउ कीजिएगा जब इंस्टॉल कीजिएगा ना तो उसको अलाउ जरूर कीजिएगा उसमें कुछ भी पूछेगा अलाउ कर दीजिएगा है ना तो आपका जरूर काम करेगा। एक बार फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए और कुछ भी मांगे अलाउ अलाउ अलाउ कर दीजिएगा एकदम आपका काम करेगा। फिलहाल ये फीडबैक।
3: आरजे अमन सर जी विष्णु चंद्र जी अपने गाने में शामिल किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल करके सभी को भी धन्यवाद देते हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ आर्य सुंदर जी लेते हैं कि आरजे अमन सर जी बहुत ही अच्छी सुविधा आपने उपलब्ध की है जो भी दोस्त वो लिख पढ़ नहीं सकते हैं वो कम से कम आज के दिन एक दिन तो कॉल करके गाना सुन सकते हैं। जी बिल्कुल एक दिन के लिए उन लोगों के लिए दिया गया भाई। और लाखन मलाकार जी लिखते हैं बहुत ही बढ़िया गाना है सर जी मजा आ रहा है सुन सुन के। और मीना जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी मीना जी। और ये क्या कहते हैं इनकी पूरी
1: सॉरी आरजे अमन बिकॉज माय फ्रेंड इज डिस्टर्बिंग मी जस्ट व्हाई आई कुडंट स्पीक विद यू आई एम सो सॉरी।
0: नो प्रॉब्लम सर नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम
1: आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू।
0: नो नो नो नो सर नो प्रॉब्लम सर जी कोई बात नहीं है होता है होता है होता है नो प्रॉब्लम। और फिलहाल ये अभी तक गाना डाउनलोड क्यों नहीं हुआ भाई नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे गाना डाउनलोड होता है मैं कोशिश करूंगा सुनवाने के लिए। अगला डिमांड मैं तब तक प्ले कर रहा हूं और ये डिमांड ओके ये डिमांड मैं किनका ले लेता हूं। फिलहाल नंदलाल जी का मैं डिमांड मैं प्ले करने वाला

0: बात है, क्या बात है, आज तो एक से बढ़कर एक सॉन्ग चल रहा है, सभी सॉन्ग सुपर हिट। तू निकला छुपा रुस्तम और परदेसी परदेसी जा रहा नहीं, और भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं, मज़ा आ जा रहा सर जी।
1: धन्यवाद रवि मॉडे जी आपका, और गजानंद जी नीचे उदित नारायण की आवाज़ में बहुत ही शानदार भोजपुरी गाना सुनने को मिला, मज़ा आया है। एक और आ रही है, कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो, आपका शुभ नाम?
2: हेलो सर, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बता दीजिए प्लीज।
2: मोहम्मद शकील है सर मेरा नाम।
1: और सर जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, मुंबई से।
2: मुंबई से सर।
1: ओके जी, बहुत बहुत वेलकम है सर जी आपका।
2: ओके ओके सर,
1: तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे? क्या आपने कॉल किया है? जी मुझे पता है, सॉन्ग सुनने के लिए आपने कॉल किया है।
2: हाँ सर
1: जी, बताइए तो क्या सुनेंगे?
2: वो हिम्मत वाला मूवी है, गाना बोल है सब लाइनों में सपना, ऐसे गाना है।
1: हाँ, बिल्कुल,
2: सजना पे दिल आ गया।
1: बिल्कुल, तो इसमें एक है ओल्ड वाला है और एक न्यू वाला है।
2: जितेंद्र वाला सुनवाना, उसमें गाना दो है
1: जी।
2: जितेंद्र वाला सुनवाना सर।
1: अच्छा,
2: एक गाना वैसा ही है अजय देवगन का भी।
1: ओके,
2: जितेंद्र वाला सुनवाना सर।
1: मैं समझ गया, आपको सुनना है यानी कि जो यानी कि पुराना वाला हिम्मत वाला है वो सुनना है ना?
2: हाँ, पुराना वाला।
1: ओके ओके, तो चलिए एंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।

0: फिलहाल फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पे सर्विस भगत जी क्या कहते हैं?
1: अर्जय अमान सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और रवि मर जी क्या कहते हैं?

0: आ गया।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाने बहुत सारे फीडबैक भी आ गया। और यहाँ पे नंदलाल जी देखते हैं सर जी, मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि आपने मेरा भी गाना प्ले किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और खुलजा सिम सिम बहुत तेज लगा रहे हैं। और यहाँ पे प्रियंका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा प्यारा गाना प्ले हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर गाने चल रहे हैं, अच्छा जी। और आरती तिवारी जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, ओके जी। और एम डी शिवाजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि मजा आ गया सर जी। और किशन पाल जी लिखते हैं कि कार्यक्रम बेहतरीन चल रहा है। और निशांत अहबुल लिखते हैं कि मेरा सभी सभी सभी गाने फेवरेट चल रहे हैं। रवि मार जी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि नैनो में सपना वाला गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि नैनो में सपना और सपना ये वाला गाना तो सच में बहुत ही लाजवाब है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। मीना कुमारी जी लिखते हैं कि गाना सच में बहुत ही प्यारा है। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि हमारे बम्बे वाले दोस्त का गाना लाजवाब लगा है, नैनो में सपना। अगला जो एक कॉल आ चुकी है, रिसीव करते हैं जी। आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज। शक्तिलाल कुशवाहा जी, बहुत बहुत वेलकम है मिक्स मस्ती में। और तो बताइए कैसे हैं आप?
2: अच्छे हैं सर।
1: और क्या कर रहे हैं आज?
2: फोटो मार रहे हैं
1: जी,
2: फोटो फ्रेमिंग का काम करते हैं।
1: अच्छा, फोटो फ्रेमिंग का काम करते हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। तो वो यानी वाला फ्रेमिंग अब बनाते हैं जो मतलब है कि वो 3D वाला होता है?
2: सभी बनता है, 3D,
1: HD, सादा। ओके ओके ओके। आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप, ये बता दीजिए।
2: और गाना एक सुनना है।
1: हाँ बता दीजिए।
2: मोहब्बत जिंदाबाद।
1: मोहब्बत जिंदाबाद,
2: जिंदाबाद।
1: ओके, चलिए एंजॉय कीजिए।
3: रब्बा तेरा शुक्रिया।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और मेरे पास यानी विभूति भूषण शरण जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है। लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। मीना जी लिखते हैं, वाह क्या बात है, रियली मोहब्बत जिंदाबाद। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और गजन जी लिखते हैं, मोहब्बत जिंदाबाद। उदित नारायण और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में लाजवाब गाना सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड जरा था भोजपुरी यहाँ पे सुनवाते हैं आपको, लाली पॉप लागे लू सच में गाना बहुत है झकास बा। धनेश कुमार जी मिश्रा जी सुनना चाहते हैं दिल्ली से, लाली पॉप लागे लू। एंजॉय कीजिए।
1: तू तो गर्दा उड़ा दे ले बड़ो
0: सही में,
1: सगरो तुहरे चर्चा बा।
0: बिल्कुल
1: रास्ता चला तड़ू तो देसी पाउडर उड़ता
0: सही में का।
2: अभी कहाँ देखला, ई तो शुरुआत है।
0: हाँ।
2: आगे आगे देखा होखा था का
0: होता।
1: बात तो तू ठीके कहतड़ू, तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापा कल में कूद के जान दे दी।
0: ओ माय गॉड
2: दे दा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे निशान साहब लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। जितेंद्र जी लिखते हैं सर जी भोजपुरी गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक कॉल आ रही है इसी बात रिसीव करते हैं। हेलो जी आपका शुभ नाम।
1: हेलो
0: जी आपका शुभ नाम सर जी।
1: हेलो हाँ सर सूरज बोल रहे हैं सर जी।
0: जी आपका और मतलब कहाँ से बात कर रहे हैं सर जी?
1: जी मिर्जापुर से हम बोल रहे हैं।
0: मिर्जापुर, अरे मिर्जापुर तो इन फिल्म भी लगी हुई है और उसका ये देखिए
1: जी हाँ रवि किशन जी का
0: हाँ और उसका मतलब वो इतना सारा यानी कि सीजन भी चला था क्या बताएं
1: जी
0: उसका जी वेब सीरीज भी था उसका बहुत सारा यानी
1: जी मेरा हाँ, पहले भी बहुत पहले आई थी वो
0: जी जी जी जी जी। तो अभी यानी मिर्जापुर का क्या हाल चाल है
1: जी? मिर्जापुर में तो कचाकच बारिशें हो रही हैं।
0: कचाकच बारिश तो बारिश का आनंद लेते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दिया है कि नहीं
1: जी।
0: तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: तो सर पवन सिंह का एक गाना था भोजपुरी में सनहिया लगावल बहुत बात नहीं थे।
0: अरे बाप रे बाप हाँ
1: नजरिया चोरावल बहुत बात होला
0: बहुते बात होला ई बात बा हमें तो मालूम ना
1: हाँ यह बात अरे मालूम हो जाए ना सर जी।
0: हाँ यो बात बा
1: गाना बहुत तगड़ा बा।
0: अच्छा बाबा तो लगातार सुनाए पड़ी ली सुनवा देनी एंजॉय कर
1: जी।
0: ठीक बा
1: हाँ, पूरा सुनैया सर जी। पड़ी
2: हमने के मिलन अब नहीं हो सकत कुछ मजबूरी बा जेकरा कारण हम तो उसे ना मिल सकीला।
3: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे आज आंसू पोछत अनि एगो प्रश्न बन के काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: पर कमे को रेडियो हॉट साथ जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे मीना कुमार जी लिखते भोजपुरी गाना भी बहुत ही अच्छा लगा है, और गजानंद जी लिखते हैं कि डांसिंग सॉन्ग था बहुत अच्छा लगा है, भोजपुरी लॉलीपॉप लगे लो। और फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: हेलो अमन सर जी, जी अभी अभी मिर्जापुर के हमारे रेडियो नए साथी, इनकी फरमाइश भोजपुरी की बहुत ही अप्रतिम लगी, शुक्रिया उनको। और उनको मैं कहूँगा हमेशा सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार के कार्यक्रम आरजे अमन जी के साथ, जो सबको दीवाना बना दे। मैं आत्माराम पटेल महाराष्ट्र से।
0: बिल्कुल। और यहाँ पे यानी कि फूले भक्त संजू भाव क्या कहते हैं।
2: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी। अमन सर जी, आज का जो कार्यक्रम है स्टार बॉलीवुड मस्ती, एकदम ललन टॉप और रेडबुल हो रहा है सर।
0: अच्छा।
2: क्योंकि सभी दोस्तों की जो फरमाइश है सर, एक से बढ़कर एक है। और आज आपने जो एक बदलाव लाया है इस कार्यक्रम में, आप ऑन एयर कॉल पर श्रोताओं की जो फरमाइश पूरी कर रहे हैं सर, एकदम मज़ा आ रहा है।
0: आज से नहीं,
2: जैसे कि अभी हमारी फरमाइश चल रही है भोजपुरी गीत है इनका, इनका मैं नाम नहीं सुन पाया, तो उनका गीत उनके पहले आपने शक्तिलाल यादव जी कुशवाहा, शक्तिलाल कुशवाहा जी, इनका भी सर फोन आया था। इनके पहले मोहम्मद शकील जी, इनका भी सर फोन आया था। उनके पहले हमारे नंदलाल यादव जी, उनके पहले नरेश सहानी जी, इनका फ़ोन आया था सर। उनके पहले विष्णु चंद्र जी, उनके पहले राहुल यादव जी, इनका फ़ोन आया था सर। उनके पहले शेर सिंह जी, इनका फ़ोन आया था सर। उनके पहले किशन जी, इनका भी फ़ोन आया था सर। और उनके पहले हमारे मोहम्मद शकील जी, इनका भी सर फ़ोन आया था। उनके पहले हमारे मित्र आरिफ सिंधी जी, उनके पहले आपने हमारी ग्रुप फरमाइश और हमारे फरमाइश के साथ हमारे मित्र अंगद मिसार जी हमारी फरमाइश को पूरी किया सर। और उनके पहले हमारे मित्र सर्वजीत शेट्टी जी और अजय कुमार जी का सर फोन आया था, इनकी आपने फरमाइश चलाई सर। उनके पहले हमारे मित्र संतोष कुमार जी, इनका भी सर फोन आया था। और इनके पहले हमारे आदरणीय आत्माराम पाटिल जी, सर्वेज भगत जी और अशोक देशमुख जी, इन तीनों की आपने मिलजुल फरमाइश चलाई सर। और आपका आज का ओपनिंग गीत, तो अमन सर जी अब तक चले फरमाइश में सभी ने इतने अच्छे गीत सुनवाए और सभी ने हमें अपने गीत में याद भी किया, तो आपका मैं स्पेशल शुक्रिया बोलूँगा सर। आपने जो आज बदलाव लाया सर, जो आप लाइव कार्यक्रम में फ़ोन के द्वारा नवीन नए श्रोताओं की जो फरमाइश ले रहे सर, मज़ा आ रहा है। और आज का कार्यक्रम भी हमेशा की तरह आप सुपर कर रहे हो और सुपर से ऊपर।
0: हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: आप रेडियो बंद कर दीजिए प्लीज।
3: हाँ, बंद कर दिया सर। कैसे हैं आप
0: जी? बहुत अच्छे। आपका शुभ नाम प्लीज।
3: अकरम अली।
0: अच्छा, अकरम अली जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका
3: जी। हाँ, ठीक है अपना।
0: अरे बहुत अच्छे। आप ये बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मुंबई धरावी
0: से बात कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए वहाँ पे शोर शराबा है।
3: हाँ, कारखाने में काम हो रहा है।
0: अच्छा, कारखाने में काम हो रहा है, कोई बात नहीं। तो बताइए वहाँ पे आप कौन सा काम करते हैं?
3: सिलाई काम करते हैं सर।
0: अच्छा, सिलाई का काम करते हैं, ओके।
3: आज
0: क्या सुनना पसंद करेंगे?
3: क्रांति वीर का एक गाना है, झनकारो। हाँ,
0: अब तो मुझे चेक करना पड़ेगा।
3: क्रांति वीर का।
0: अच्छा, क्रांति वीर का है, ओके। चलिए।
3: हाँ सर,
0: गाना तो मुझे मिल चुका है, तो गाना प्ले कर दूँ?
3: ठीक है सर,
0: ओके, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।

0: एक और आ रही है कॉल, रिसीव करता हूँ। हेलो, आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज। हेलो जी, आपका शुभ नाम?
1: नवल किशोर
0: जी। नवल किशोर?
1: हाँ।
0: तो सर जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं बिहार से बात कर रहा
0: हूँ। मतलब बिहार से? कहाँ से?
1: बांका जिला।
0: अच्छा, बांका जिला से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बांका जिला के हैं हमारे वो क्या नाम है, सुनील कुमार जी।
1: हाँ
0: जी। उनका तो एक्सीडेंट हुआ है, अभी उनकी थोड़ी सी तबीयत नासाज है। ओके, फिलहाल बताइए आप कैसे हैं और क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: सर, गाना सुनना।
0: ये बता दीजिए।
1: तुम तो धोखेबाज।
0: तुम तो धोखेबाज। अच्छा, बिल्कुल भाई, लेकिन हम धोखेबाज नहीं है। वैसे गाना प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।

0: कॉल आ रही है, कॉल मैं रिसीव करता हूँ। जी आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज।
1: हेलो
0: जी आपका शुभ नाम?
1: दुर्गेश खरवार।
0: दुर्गेश खरवार जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका, और कैसे हैं?
1: आराम सर, हम बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं।
0: और सर जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हाँ हम तो यूपी उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिला से रहने वाले हैं। अच्छा। और गुजरात में काम कर रहे हैं।
0: अच्छा। ओके तो आज कैसे कैसे कॉल किया आपने और कौन सा गाना सुनना है बताइए। हेलो।
1: हाँ सर गाना हमको सुनना है, मेरा गांव मेरा देश का।
0: हाँ हाँ
1: हाय सर मैं बताऊँ अपनी प्रेम कहानी।
0: ओह हो हो अपनी प्रेम कहानियाँ। ओके जरूर मैं सुनाऊंगा इस गाने को। मेरा गांव मेरा देश का गाना है ना?
1: जी सर जी सर।
0: ओके तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।
1: आज हमको इतना खुशी है आपसे बात करके।
0: अच्छा ओहो हमें भी अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके। ओहो
1: जितने भी आरजे लोग हैं सबका प्रोग्राम में पूरे 12 घंटे सुनता।
0: अच्छा ऐसा है?
1: काम शुरू करता हूँ 11 बजे रात को, जब तक काम करता हूँ प्रोग्राम चलता ही रहता है।
0: अच्छा क्या बात है क्या बात है। फिलहाल गाले एंजॉय कीजिए।
1: खुशी हुई आपकी बात करके,
0: मुझे भी
1: इतनी खुशी हुई कि 8 साल हुआ आपके पास।
0: ओह माय गॉड। चलिए फिलहाल एंजॉय कीजिए गाने को।

0: और किसी को नहीं, फिलहाल हमें सुना दीजिए अपनी प्रेम कहानी। और फिलहाल मेरे पास फीडबैक है, गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त फुले भक्त संजय भाव का फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आर्य सिंह जी लिखते हैं कि हमारे ये धरावी वाले अकरम अली जी की फरमाइश मुझे बहुत शानदार लगी, उनको धन्यवाद देता हूँ मैं। और आत्माराम जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन सर जी, झनकारो झनकारो झनकारो, बहुत ही उम्दा गीत सुनने को मिला। शुक्रिया इन भाई को, मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और हमारे जितेंद्र जी लिखते हैं कि सभी की डिमांड बहुत ही प्यारे प्यारे प्ले हो रहे हैं, ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन जी, आपसे एक बात करनी है।
0: कहिए।
2: जब से आपका रेडियो हॉट स्टार के प्रोग्राम में सुन रहा हूँ तो पत्नी जी कहती है अब तुम मुझे सुनोगे तो है नहीं, इसलिए रेडियो हॉट स्टार ही सुन लो।
0: अच्छा।
2: बस ऐसा बोला। और अब वो मुझे सुबह और शाम दो ही बात बोलती है।
0: हाँ।
2: सुबह चाय पी लो।
0: अच्छा।
2: और शाम को खाना खा लो। बस रेडियो हॉट स्टार दीवाना बना दे। मैं दीपक गायकवाड़, सिवनी मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका भाई। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं यानी कि कुमार गौरव झा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ओके जी, और उनके पास यहाँ पे मनीषा जी लिखते हैं कि सभी गाने बहुत ही प्ले अच्छे प्ले हो रहे हैं। और निकला जी लिखते हैं कि व्हाट ए वंडरफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग, वाह मजा गया। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो डिमांड है भोजपुरिया महारानी जी का, अब भोजपुरिया महारानी जी समझ गए ना इन्हें कौन है, तो ये हैं आरजे सोनी जी। इंजॉय कीजिए इनके गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे आत्मा रामदिल लिखते हैं। बहुत ही अप्रतिम गाना चल रहा है और शो भी चल रहा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और यहाँ पे विष्णु चंद्र लिखते हैं बहुत ही सुंदर गाना, अमन जी मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं और फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, आरजे सोनी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी भाई को भी अपने अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मीना कुमार जी लिखते हैं कि हमें भी भोजपुरी गाना बहुत ही पसंद है। ओके, अगला जो डिमांड है मैं सुनाने वाला हूँ मृणालिनी जी का, ये तुम्हारा गलिया के डिम

0: बिल्कुल तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पर दिल मरता है। मनीषा जी लिखते हैं कि फूल और कांटे का गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और यानी प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: तुमसे मिलने को दिल करता।

जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, ये दिल तेरे लिए ही मैं चलता है। थैंक यू मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए।

मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं उनको और विभूत जी को पसंद। शानदार शानदार शानदार। अगला जो डिमांड है हमारे शाहिद अंसारी जी का है और सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गाना, एंजॉय कीजिए शाहिद जी।

और इस गाने के लिए इन्हें बनाया था। आज के सॉन्ग विनर बहुत बहुत बधाई हो। और इसी बात पर अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी प्रीति रायदास जी का है। सुनना चाहती है फिल्म इनपुरी नंबर 1 का गाना आ जाना।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं और यहाँ पे गजन सुनकार जी लिखते हैं कि ये यानी कि प्रीति रायदास जी के गाना मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और फीडबैक सुनेंगे लेकिन थोड़ा सा गाना सुनने के बाद।

0: अरे एरोप्लेन से आएगा ना, कह लिए घबरा, मतलब बहुत सारे आने के लिए तो बहुत सारे चीजें हैं, अब जैसे भी मन कर आ सकती हैं। और यहाँ पे यानी कि प्रीति दाहिदास जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे प्रमोद कुमार जी लिखते हैं हम भी जुड़ गए, बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई प्रमोद जी आपका, और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: जब नींद आए ना रातों को रानी, करने लगे तंग तुझको जवानी।
0: क्या बात है,
1: प्रीति रैदास जी का गाना बहुत अच्छा लगा अमन सर, बहुत बेस्ट गाना लगा।
0: बिल्कुल, और अगला गाना आप ही का है, टेंशन मत लीजिए। ओके है, और मोहम्मद शकील जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, और यहाँ पे विजय कुमार जी लिखते हैं कि हम भी सुने हैं, अच्छा बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये प्रीति जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। तो अगला जो डिमांड है हमारे सोनू गौतम जी का है, सुनना चाहते हैं जिहाल मस्ती मुकुम बरंजिस, एंजॉय कीजिए।

अमन जी, इस सॉन्ग में इन्होंने बहुत आसानी से कह दिया है कि तुम्हें जब याद आए तो हमारी गली आ जाना, बट किसी का घर अगर दूर होगा तो वो कैसे मिलने आएगा, बताइए।

बिहार में 5 फीट बैग है और बगेश्वर निशा जी लेते हैं। गाना सच में बहुत ही प्यारा है, नाइस सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, बाबूलाल जी लिखते हैं, सोनू गौतम जी के पसंद बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच। और गजानन जी लिखते हैं कि हमारी जिहाल मस्ती मुकुम बरंजिश वाला गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सोनू गौतम जी को। सोनू गौतम जी लिखते हैं कि गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि सुपर से भी ऊपर वाला गाना है, मेरा फेवरेट गाना है जी। एक लाइन और सुनिए।

0: कौन?
1: सर जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार जी, शुभ नाम आपका?
1: मेरा नाम ब्रह्मजीत जी।
2: जी
1: ब्रह्मजीत, ब्रह्मजीत।
2: अच्छा ब्रह्मजीत जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं ब्रह्मजीत जी आपका। और कैसे हैं
1: सर? बढ़िया।
2: ओके जी, तो आप ये बताइए,
1: आप सुनाइए।
2: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: मैं सर जेवर से कर रहा हूँ।
2: जी
1: जेवर से, जेवर से।
2: जेवर, ये सर मतलब कहाँ पड़ता है?
1: जेवर यहीं पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में।
2: अच्छा जी, ओके। तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: हमें गाना सुनना है हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को।
2: ओहो, कोई पत्थर से ना मारे।
1: जी जी जी,
2: ओके जी, तो मैं सुनवाता हूँ, एंजॉय कीजिए, है ना?

0: जब भी मैं फोन पे बात करता हूँ मैं दोस्तों से ये पूछना भूल जाता हूँ कि गाना डेडिकेट किसे करना है, मैं ये हमेशा भूल जाता हूँ। फिलहाल मेरे पास फीडबैक है, शामिल करता हूँ मैं।
1: याद सताए तेरी नींद चुराए, अब दिल ना लगे दिल बर, तेरी मोहब्बत में भूल गया रब को, मुझको दुनिया मिल गई, तुझसे नाता जोड़ के जाऊंगी ना मैं कभी, तेरा चल छोड़ के आ गली लगा ले।
0: अच्छा।
1: मैं तड़पू अकेले अब रात रात भर, बहुत ही प्यारा सॉन्ग।
0: वाह वाह वाह, हिमेश हिमेश रेशमिया की बहन जी, आपने गाना बहुत अच्छा गाया है, ये फीडबैक।

0: घूंघट उतर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे सीने से निकल रहा है।
1: अच्छा ऐसा है।
0: तुम्हारे सीने से

0: सारा दिल है जिन दोस्तों को गाना ये बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं।
1: ओके जी, एक काम कर दी, पूरा गा देती है, अच्छा लगता। और यहाँ पे गजन जी लिखते हैं कि हुस्न हाजिर है, गाना बहुत अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है आरती तिवारी जी का ही है, सुनना चाहती हैं इतना मैं चाहूँ तुझे।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिलिया हम
0: अच्छा
1: हमारा
0: क्या
1: दिल
0: हुआ
1: है। अमन जी आपने बोला था कि हिमेश रेशमिया की बहन, बट हमें ऐसा लग रहा है कि अब रेडियो स्टार पे धीरे धीरे और भी हिमेश रेशमिया की बहनें आ रही हैं।
0: अच्छा।
1: आप बस हॉटस्टार सुनाते चलिए और हिमेश रेशमिया की जो बहनें हैं वो बढ़ती चलेंगी।
0: बिल्कुल, यानी कि फर्स्ट तो आप ही हो ना। वैसे यहाँ ये फिर
2: आरजे अमन सर जी, आरती तिवारी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे आरती जी लिखेगा थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। मनीषा शर्मा लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है। अगला डिमांड वो पूजा भास्कर जी का है, सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए पूजा भास्कर जी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हटेटा जो दीवाना वाले का जनन जी लिखते हैं कि ये पूजा भटका जी की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी है और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अमन जी, पूजा जी का ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम सुना है। वो कहाँ से लाती हैं इतने प्यारे सॉन्ग कि वो विनर भी बन जाती हैं। इतने सॉन्ग तो हमने भी कभी नहीं सुने। उनकी जो डिमांड रहती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और जो आप बीच बीच में अच्छा हाँ हाँ ये सब करते हैं ना, तो एक प्रोग्राम में एक फ़न आ जाता है। मीन्स मतलब ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी प्रोग्राम में मजाक मस्ती चल रही है। तो ये सब सुन के ही ये प्रोग्राम बहुत ही बेस्ट हो जाता है। तो थैंक यू, आप इतना अच्छा प्रोग्राम देते हैं और हम सब लिसनर इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनते हैं। थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ऐसे सुनते रहिए। और जहाँ पे जानिसार जी लिखते हैं कि जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है जानिसार अख्तर जी। और परमल कुमार लिखते हैं कि अभी तक जितने भी दोस्तों के सॉन्ग प्ले हुए हैं सभी एक से बढ़कर एक लगे हैं। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि हम तुम्हें मिल गए, तुम हमें मिल गए, बहुत ही अच्छा गाना लगा, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। अगला डिमांड मनीषा शर्मा जी का सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए।
2: Choice this evening. Do I sound a little...

बिल्कुल बहुत प्यारे बहुत प्यारे बहुत प्यारे, इसलिए अगला जो गाना मैं सुनवाने वाला हूँ वो यानी कि प्रीशा जी का है। प्रीशा जी सुनना चाहती हैं गहरा हुआ, और ये गाना तो मेरा फेवरेट में से एक है, तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए गहरा हुआ।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट रिचार्ज, जो आपको दीवाना बना दे बगैर रिचार्ज जी लेते हैं। सुपर सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच। और ये फिर वैसे लेते हैं
1: अमन जी, अभी जो आपने सॉन्ग सुनाया है गहरा हुआ, वो काफ़ी प्यारा सॉन्ग है, क्योंकि आपने उसको बहुत ही शानदार अंदाज में सुनाया है और ये अंदाज काफ़ी पसंद आया है, तो थैंक यू सो मच इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए। जिसकी मेरी डिमांड थी उनको भी दिल से शुक्रिया।
0: ओके जी, और यहाँ पे मनीष समझ लेते हैं सुपर सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है। और पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने का। अगला जो डिमांड है राहुल पासी जी का है, सुनवाते हैं।
2: समझ कर चांद जिसको आसमां से तारा होगा, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का एक टुकड़ा है।
0: फिल्म का नाम बाजीगर। एंजॉय कीजिए राहुल पाजी जी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। और यहाँ पे प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: राहुल पासी जी, आपका सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, जिस पे आपने कहा था कि प्रियंका जी फीडबैक देना, बट मैं ये सॉन्ग को ज़्यादा गुनगुना नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे ये नहीं आता है, पर बाजीगर मूवी का एक सॉन्ग है जो मैं गुनगुनाती हूँ।
0: अच्छा।
1: छुपाना भी नहीं
0: की डिमांड भी है मेरे पास।

0: मनाना
1: अब बता दीजिए उनको।
0: नहीं आता हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। थैंक यू।
1: ओके जी, और यहाँ पे प्रमुख मलिक देंगे, वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के। और बाबूलाल जी लिखते हैं राहुल पासी जी के पसंद बहुत अच्छे लगे। अगला जो डिमांड है वो रितु जी का है, और चांद की बात चल रही है तो इस गाने को जरूर मैं प्ले करूंगा। इंजॉय कीजिए।

तो लग रहा है कि मुझे भी अपनी पसंद का गाना सुनना ही पड़ेगा। इस गाने के बाद जरूर सुनाऊंगा। दो गाने हैं, एक हिंदी और एक भोजपुरी, जरूर सुनिएगा। मेरी पसंद कैसी लगेगी जरूर बताइएगा इस गाने के बाद।

बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि दो गाना मैं प्ले करूंगा, तो फिलहाल ये मैं प्ले करूंगा और इसके बाद से मैं थोड़ा थोड़ा ही गाना सुनाऊंगा, यानी पहले ये एक अंतरा ही मैं सुनाऊंगा, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को और फिर आते हैं तो वो सुनाते हैं। ओके okay.

0: एक कॉल आ रही है जी। हेलो, आपका शुभ नाम। वो फोन कट गया, कोई बात नहीं। अब मेरे पास फिर बैक आ चुके, बहुत सारे सामने करता हूँ।
1: समझ कर चांद।

0: का टुकड़ा है। अमन सर बहुत लाजवाब सॉन्ग लगा विनोद राठौर जी की आवाज में बाजीगर मूवी से, धन्यवाद।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे एमडी जमीरुल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है एमडी जमीरुल जी आपका। और प्रमोद कुमारी जी का ऑसम रिमाइंडर, थैंक यू सो मच समझ कर चांद। और ये फिर
2: अमन जी राहुल जी को सॉन्ग सुनाया है, बट इसके अलावा कोई ऐसा मतलब कुछ नहीं है।
1: ओके कोई बात नहीं, हम आपसे सफाई नहीं मांग रहे हैं। और स्वरूप कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और यहाँ पे
3: आरजे अमन सर जी, सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे बागेश्वर निषाद जी जीतेंगे, बहुत ही शानदार लाजवाब पसंद है। और अगला जो डिमांड है मैं प्ले कर रहा हूँ, ये है निक्की खान जी का। और निक्की खान जी सुनना चाहती हैं ये प्यारा सुनग में, एंजॉय कीजिए।
4: पहले भी मैं

0: जब कॉल फिर से दोबारा आ रहा है रिसीव करता हूँ। जी हेलो, आपका शुभ नाम?
1: हेलो सर
0: जी,
1: वालेकुम
0: सलाम, शुभ नाम आपका?
1: इस्तिखार बोलना चाहूँ
0: जी। तो सर जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: इस्तिखार
0: धरावी। आप कहाँ से? अच्छा, धरावी से बात कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भाई इस्तिखार जी।
1: हाँ जी,
0: बताइए।
1: गाना सुनना था, मेरे जीने में दूंगा, तुम याद ना आया करो, याद आने के पहले तुम चली आया करो,
0: तुम याद ना आया करो। अच्छा,
1: तो भाई जीने नहीं दूंगा।
0: यानी किसे कर रहे हैं याद?
1: बात ऐसे तुमने क्या कर रहे हैं?
0: अच्छा, और गाने गाना यानी किन किन दोस्तों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: सकीन है, अकरम है, उबार भाई है।
0: ओके,
1: आपको सबको
0: थैंक यू सो मच। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: Yes, no.

0: बिल्कुल कारवा रुक गई और ये फीडबैक भी आ गई है, सुनते हैं।
1: झूमता है मेरा अंग अंग क्यों
0: क्यों,
1: अपनी रूह की सदा से पूछ लो।
0: अच्छा,
1: बज रहे हैं जल दिल में जल तरंग क्यों
0: क्यों क्यों क्यों,
1: छेड़ती हवा से पूछ लो।
0: नहीं आता है पूछना,
1: बादलों में छुप रहा है चांद क्यों।
0: अरे क्यों छुप रहा है जी,
1: अपने हुस्न की अदा से पूछ लो।
0: अच्छा जी,
1: चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, अपनी ही किसी अदा से पूछ लो। थैंक यू, इतना प्यारा सॉन्ग।
0: ओके जी, और यहाँ पे अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा, लेकिन यहाँ पे गजानंद जी लिखेंगे दोस्त आदरणीय, इन प्रमोद कुमार जी के पसंद मुझे अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। अगली जो डिमांड है वो यानी कि मीना कुमारी जी का है। मीना कुमारी जी, इंजॉय कीजिए गाने को।

प्ले करने के लिए दोस्तों का भी शुक्रिया। और यहाँ पे मनीषा शर्मा लिखते हैं कि थैंक अमन जी, यानी प्रियंका जी का फीडबैक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है हमारे बागेश्वर निशा जी का है, ये भाई समोसे में आलू वाला काम करना चाहते हैं, तो सुनवाते हैं, एंजॉय कीजिए समोसे में आलू।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो दीवाना बना दे। और क्या कहती हैं, सुनते हैं?
1: अमन जी, सभी सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं, बट थोड़ा सा जो ये भोजपुरी सॉन्ग आते हैं वो मुझे समझ में नहीं आते हैं कि वो क्या गा रहे हैं। बट जो भी गाते हैं अच्छे ही गाते होंगे, इसलिए अब मैं ऐसा करूँगी कि हमारे ऑफिस में भी कई बिहार साइड के लड़के हैं, तो उनसे बोला जाएगा कि मैडम को भी थोड़ा सा भोजपुरी सिखा दीजिए, क्योंकि आजकल वो हॉट स्टार रेडियो हॉट स्टार सुनती हैं, तो जब भी ये भोजपुरी सॉन्ग चलेंगे तो उस समय पे समझ में आ जाएंगे। तो शायद अब मैडम को स्टूडेंट से क्लासेस लेनी पड़ेंगी भोजपुरी सीखने के लिए।

0: और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं भाई हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी।
1: अमन जी, यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में बहुत भीड़ रहती है और एक ऐसे ही ट्रेन में मैं चढ़ गया, उसमें बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही गर्दी हो रहा था। जैसे ही मैं अंदर चढ़ा, कई लोग एयरफोन लगा कर कुछ कार्यक्रम सुन रहे थे। तब मैं एक आदमी से बोला, भाई एयरफोन लगा के तुम क्या सुन रहे हो, तुमको इतना गर्मी और गर्दी नहीं लग रहा क्या? उसने कुछ बोला नहीं और मेरे कानों में एयरफोन लगा दिया और मैंने सुना उसके अंदर रेडियो स्टार चल रहा था और चल रहा था भोजपुरी गाना। जैसे ही वो गाना सुना, मेरे आंखों के सामने से सारी गर्मी और सारी गर्दी गायब हो गई और मुझे ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगने लगे और मुझे मज़ा आने लगा। तब मैं समझा कि इनको इतनी गर्मी और गर्दी क्यों नहीं लग रही है, ये तो रेडियो हॉट स्टार सुन रहे हैं भाई। जी हो राजा जी हो, धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: ओके, अगला डिमांड में आप ही का प्ले कर रहा हूँ, इसी बात पर सुन लीजिए। और कबूतरी बोले कबूतर से,

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और यहाँ पे निशा लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी और सोनू गौतम लिखते हैं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, गाना एकदम लाजवाब लगा है। और मनीषा जी लिखते हैं मिस्टर एंड मिस्टर खिलाड़ी का गाना बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी के पसंद और जब तक रहेगा समोसे में आलू, दोनों बहुत अच्छे लगे हैं, ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन जी आपने मेरा गाना बजाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात बता दूं, एक बार मेरा कबूतर कबूतरी के साथ उड़ गया और कभी वापस नहीं आया, क्योंकि कबूतर जब जाता है कबूतरी के साथ तो वही रहता है, वापस नहीं आता मालिक के पास। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: ओके, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो राजेश कुमार गेटर नोएडा हबीबपुर से सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए।

0: वेलकम है रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और ये फीडबैक सुनते हैं, क्या कहती हैं प्रियंका जी?
1: हमको समोसे वैसे भी बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं ये सॉन्ग गुनगुनाऊंगी।
0: अच्छा।
1: जब तक रहेगा समोसे में आलू, चुपकी रहेगी तुझसे ये शालू, और खाती रहेगी समोसा। क्या सॉन्ग सुनाने के लिए
0: खाते रहे समोसा सुनते हैं रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। गजानंदी से मीना इब्राहिम जी के पसंद बहुत शानदार लगी, उनको धन्यवाद देते हैं। और मनीषा जी लिखते हैं कि मिथुन दा का डांसिंग सॉन्ग अच्छा लगा। और अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, हमारे संदीप सुतार जी की और निशांत राय भोले जी की, दोनों सुनना चाहते हैं एक ही गाना। इंजॉय कीजिए इस गाने को, थाम्बा रे थाम्बा।

और फीडबैक को साइड में रखते हुए अगला मैं गाना मैं प्ले कर रहा हूँ हमारे गोविंदा खंडादे जी का, और क्योंकि मुझे 10 बजे ही जाना है।

0: तो सुनवाते हैं आपको अगला डिमांड हमारे, देखा जो पलट गए।
1: देखो जो पलट के, जिया मेरा भटके।

ओके तो अब मैं आखिरी डिमांड प्ले करने वाला हूँ और यहाँ पे इनमिना इब्राहिम जी लिखते हैं हमारे गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। गजानंद जी लिखते हैं आशा भोसले की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है और किशन पाल जी लिखते हैं कि सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। तो आखिरी गाना मैं किशन पाल साइकिल जी का ही मैं प्ले करके जा रहा हूँ और ये गाना आप सभी को डेडिकेटेड है और इसी गाने के साथ मुझे डीजे प्रोग्राम से निकलने की इजाज़त मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं और सुनते रहें रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

गीत है। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

Mm-hmm.

0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलोसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

0: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,

0: लिखे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

में। हाँ।

श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा जू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।